पौड़ी जिससे ये सुपा ये सो साहब सदा संभालिए, जिस किताब पर यह अपना सा काल परिकुल कालिए, मंदा मुल्ला की जी दे लंबी।

दोस्ती कदना मेरा जहां जानत हो वरते वेको को निजात वस्तु अंदर वस्तु मावे तुझी होवे पार साहेब संत हुकुम ना

पौड़ी चाकल के चाक तले खस में भाई हुरमत सुनो अगली वो चुना खाए खस में करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वजो को आए गुलाम मुंह में पाना खाए जिस दाद तक खावना तिसके ये सबास नार चले ना।

0: बिनादेन चढ़दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।
1: जी गुरु कृप निवास यंत्र जामे सचे पातशाह जी महाराज साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जी महाराज तिना दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन स्थान दियां हाजरियां भरदे होए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत माया अरदास कराई है सतगुर सच्चे पातशाह जी। सतगुर जी आप जी नाम जाने जान हो सतगुर जी कृपा करनी

परम सन्मान योग गुरु गरीब निवास वालिए कुल आलम नूरे कायनात श्री कलगी तर दशमेश पिता अमृत के दाते पंथ दिवाली आपे गुरचेला शमशीर बहादुर जी तख्ता वाले ताजा वाले फौजा वाले बाजा वाले साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दे पावन सतजुगी तप स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अवचल नगर साहिब जी विखे अमृत वेले तो सजी हुई दीवान दे अंदर मन बाणी शरीर करके हाजरियां भर रही सतगुरु जी दी साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जीआं दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार राही पावन गुरबाणी दी विचार नाल जुड़ करके आत्मिक लाभ प्राप्त करने दा समा सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने। सरबत माई भाई जग्यासु जन मन चित बिरतियां एकागर करके गुरचरणा दा ध्यान धरदिया हर जस द्वारा अपने अपने मन नूं गुर शब्द दे नाल जोड़िए। मन दी एकाग्रता अते मुख दी पवित्रता वास्ते गुरु साहिब जी दा बख्शिश कीता।

पूर्ण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी अनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त।

पंच नार संग अष्ट सोत उठहे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान औ आहे विनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं

0: प्रसाद तोमर छंद तोमर छंद हरदन मरन बीन दस चरण मरन बीन दस कलंक रूप पीन तेज उदाल तेज उदान बिज रूप दुरंत सब जन बिज महंत जस तिलक भू वर्तमान चार चार वर्तमान दस चार चार वर्तमान अकलंक रूप अपार सब लोग लोग विदार अकल काल परम पीर सब कर्म धर्म पीर सब कर्म धर्म पीर मन खंड अतुल प्रताप सब ना भयो जय थाल थाल सब थाल जय श्री चार का वेद वेद चार का वेद वेद जय निर्द निकम का अंत मुख चार पंक्त वे अंत मन विद्या अतुल प्रताप मन खंड अतुल प्रताप जय कीन जगत प्रसाद
1: तू ही

0: को विचारी दाम के सहत जो पाई है ता दाम के सहत न में कति न हम सहत है जाब के की न जाब में सहत है जाब में को तम जो ति पाई है तो ही उचरत है न ही पे उठत जब नारायण भाई के पद उठन जो कहां से डोल लगो करत है आत्मा में जब डोल न करती भरत कर बजा के पद के भजन करत है पद के भजन न करत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जैसे
1: रूपम प्रभात प्रताप ਸਦਾ
0: देव भेव न जान ही जे मरम दे दे जान सन और सन दे सन दे पाप ही न से जज पाप न मन से मन से पर गौर दास के अंदर सुनि के से पर गौर वाली से सब करो मेरे से जा पाप ही सर्व सब पद पर जय जा सर्व जा पाप लग के सर पाप लग के जा नाद रत दे पाप ते जन मन न लाव ये तंत्र मन मन की न से कर तंत्र देव में की न राज प्रभु ने तो राजा जा रब देव दीन न ब्रह्म शक्ति ज्ञान के बुद्धि मन पर पर दिया सुंदर दिल बहना है बेटा गुड़ गौड़ में दिल में कर प्राण से गुड़ गौड़ में राग रस से मस्त रूप मुंह न प्राप्त वरन मद पर भूम आसन जात जन्म न काल कर्म न धर्म जात दे ही काल गति तत जात रण दे पूजा गोट के जाति दे पूजा सब सब तार के तत जान दे जब तो कर से सजान के जो है से तन हो सब से तो कटे तन हो सर पर तो तन हो सब तो हट के जात पाप न गोत्र का रूप व्यास न परन गोत्र का तत्व सब के अपना सब रूप परा सब के दोष सब भूत सब भंजन पर प्रभु प्रमात दोष न परा दोष कर मा जात में जय दा भूत पाप मन जय का मान प्रभु देव भगवान जय आदन धन जय भगवान जय आदन जय जय धर्म रे धन जय तीन तमर मसे जय कर देव गति न प्राप्त कर जय जय भगवान सब के भूम का जय सारे मानिए जय नाम दोष
1: राजा
0: कवन कृष्ण को बुझाए कहां से खबर बिचारे कहां कृष्ण को बुझाए कहां से कब सार तो हो रहा तो कहां कर लो कर रहा कहां भरम को लो कर रहा कहां चित मटकी को सीता चित मटकी से जो हो रहा चित कहां से सब हो रहा कहां के हां के मन को रो के सो के कब कहां धर्म को लो के सो के दो हो रहा धर्म की हां दो हो रहा को सूरा सुंदर कवन कहां जो सूरा सुंदर को कहां जो सूरा हो दामनी प्रहासन सुच विवासन जनपदी प्रहासन बूट करते ने व्यवस्था सुर का कान जो बूट गाते रखते अनला चच धर्म दते द्रोणानंद रचन दते विवंती श्लोक जयंती दते धरवे दिया जय हो श्री मन हरि मन पाप को नाशन धर्म करे पाप गुरु निवारण दे प्रजा असुर को निवारण सब धर्म दे वाणी रंग वाण सब धर्म दे सब प्रहारण सब धर्म दे सब प्रहारण सब सहति सन्नाह अच प्रवाह बहुत निर्वाण हम तेज तुरंग जाओ जाओ सी जग सुन मरा भूम सत्य काल जनम भूम आचार चंद्र नंद चक्रमार जाधु मदम कार द्रप बठे धारण भी प्रधान तेज गज मते भर जग दंत ने कूड़ कथे परम प्रणाम संत चंद के पास सूरज मन पे चंद चंद जय जय हो जय मन भजे विचार भजन रूप सत्य अनंत मधु दे निरंतर गुरु गमन कर सत धम गण भण गुरु गमन कर धर्म सुंदर राष्ट्रीय प्रभाकर सर सर में बजे दल कटना संसार सर करते संत फिर से प्रभा है से सन्ना है कृष्ण प्रभा है से दे जय जय हो से ये अंत से दे नाद हो मंदिर नाद से दे नाद को मार नाद से सुर नर मन बंधन दुष्ट ने कंद सुर नर मन बंधन दुष्ट ने कंद गुरु गमन कर धर्म धार है नरक निवारे आज जय दे इनका निज प्रभावण तो दे मोहन सिंह रोहन सर दे चंचला चंगी अलग बुजंगी तुम दलवाज पढ़ती छह सर गरम की तुम दलवाज नट चुवारे रब तुम्हारे दूर बुझे दामारी तुम के बुझे हर लंके आदर नहीं के दूर के थे जाए जाए हम से दम रात दे बिंदा संजय मरुद से दम बुझे तुम बार दम सो दम बता मेरे मोचन सो दम सो जल बुझा जट से बिंदा जंती बुझे बसे सुन सो जट से सो जट से सो जट से चंचला चंगी वेद प्रसंगी वेद कल्पना की बिंदा सुरंगी आए चला हो से मना सला सुन मजरा चाचरी
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माग देश के मंगेले वीर भंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश ने आवे देवते दे आए दोख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचाता है चिट की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जस कहियत है। करते हैं विचार पै न पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सो छटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तार है के राजसी को सार

को तंत्र है, कमोहन को मंत्र है, पुण्य के पूर्ण प्रकाशी हैं। रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध हूं को घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, देवन को देव है, के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है, नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाइये न पार पार वार हूं को पार जा को की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हसी हल विद्या पूर्व बिना पार पावे असत अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव न दयाद अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, सेव के अधीन है, कटैया जय मजाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है, धरैया द्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के, हंसनी सी सिहारो मही राशि हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पल्लाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासीज के तुरंगी मकरान के वृतंगी तेरे गीत गायत है, बखरी गंधारी गोर गखरी गिरदेजाचारी मौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है, पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र तेताप नाथ कीर

जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई जो ता भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हां पाई रहा सब तेरी तू सब नी ध्याया जिसनू कृपा करह तन नाम मृतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरडै भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोहो पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हाँ जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कतै नकाम मल साधु संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधन जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा।

महा मूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदा सिव, निरंकार का छीनत नह भिव, आप आपनी बुध है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी, काहू फूल राजा हुए बैठा, काहू समट भयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे सुधुजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताकि काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छ सक न कोई, एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांसते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरण सुबराता, केलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अजदुज भय दयाला, पूरण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख ना तसै प्यापत कोई, अड़ल।

चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र।

त्रिपुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्याछै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर

हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सब ना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया। कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तत घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तह सुख हो आतित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को बुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और

बाहे गए के लाज अस गोविंदा सवार दोहरा राज करेगा खालसा के रहना कोई ख्वार होए सब लेंगे बचे सरन जो हो दोहरा उड़ गए सभा मलेश के कर कोड़ा पासा रंका वाले बदे का न कनगतार छत्र चक्र वर्ते चतार चक्र भुगते स्वयंभव सुभंग सर्वदास जुगते दुकाल प्रणासे दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते देख तेग फतेह नुसरत बेदरंग आप तज आज नान गुरु गोविंद सिंह श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार मित्र दरबारा सच कण वस्त्र रंकारा लक्ष्मी कणित वृत दरबारा सर्व ज्योति नमस्कार दोहरा।

0: श्लोक भी मैंने पहले के लिखे टुंडे असराजय के दुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहाड़े सदवार जिन मानस देवते किए करतन लागे वार महला दूजा जे सोचंदा उग वह सुर चढ़ह जा इते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार महला पहला
1: लाल गुरु ना चेतनी मना अपने सुखी।